राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन। हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावै है सब त्यावै तुजी। हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी।

तुझ बिन दूजा कोई नाहीं। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जानाए हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेवया तिन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रेष्ठ गगन ते

कृपा करी हम पर जग मत माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किल्बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहि, सुरस न पावै, सुनै मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नर की रहै,

0: जिन हुकम सब सृष्ट सवार्य ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो।
1: वाहिगुरु जी।

सत सत हर सत सत सते सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत संगत।

0: पालक सर्व कालक सर्व को पुनकार
1: जतन ततन विराजे अवतूत रूप प्रसाल
0: राम राम ना जात जग रूप रंग न रेख
1: आद पुरख दार मूर्त जो नाद सेख
0: बेस और ना पेश जग रूप रेख न राग
1: जतन ततन दिशा विषय फैलियो अनुराग
0: राम कम विहीन पेख तामु नह जाए
1: शरम मांस

0: आत्मा न जात जग जन मन विहीन
1: चक्कर बकर फिरे चतर चक मानिय पुरति न
0: लोक चोदे के बिखे जग जापई जे जाप
1: आदेवनाद मुरो थाप्यो सबे जे थाप
0: परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
1: शर विचो रचो छन्यन कान पंजन हार
0: कालहीन कलस युक्त काल पुरख देश
1: धर्म दान सो परम रहत पूतला खपेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम
1: गर्भ कन्या दुष्ट पंजन मुख दाय काम
0: आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवतूत
1: गर्भ कन्या सर पंजन आद रूप सूत
0: अंगहीन पंग नातम एक पुरख पार

0: कर्मक सर्वं कर्म
1: सर्वचुक्ता सर्वमुक्ता
0: सावल शांत्वे प्रसाद नमो नरक नाश सदैवं प्रकाश
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं प्रभुते
0: मातं प्रमाते सदा सर्वसाध्य
1: स्वरूपे निर्वाक प्रभुते
0: अनंगी अनामे तर्बंगी तर्कामे
1: नपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
0: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
1: न ताते न माते न जाते न

0: के कर
1: मन मन है जग जन है
0: सरबन पर है सरबन कर
1: सरता से है सरबन से है
0: करुणा कर है विशंबर है
1: सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कलखंड
1: परते पर है करुणा कर है
0: अजपा जप है थपा थप
1: अकृता कृत है अमृता अमृत है
0: अमृता अमृत है करुणा कृत
1: अकृता कृत है तणी कृत है
0: अमितेश्वर है परमेश्वर
2: है अमृता अमृत
0: अजपा कृत है अमृता अमृत
2: निर्णायक है कलकायक है
0: विशंबर है करुणा ले
2: निर्णायक है सर्पायक है
0: पंजन है अर्गंजन है
2: रिप्तापन है जब जापन है
0: अकलन कृत है सर्वा कृत है
1: कर्ता कर है हर्ता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म
1: आत्म बस है जस के जस है
0: जंग प्रिया छंद

0: माते मतंग जरे जर संग नूप तंग सुरंग सुवारे
1: तुरंग कुरंग से कुदर पौन के गौन को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूप पली बित न्यावत शीस न जात बिचारे
1: तो कहा पे पूप अंत को नागरी पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गोड़ के जान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: पूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री भगवान पजे बिलंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीर्थ नान दे आदम दान सो संजम ने मनेक बसे खै
1: कुरान कते कुरान जमीन जबान सबान के पेखे
0: कौन हार जति जत्तार सबे सो विचार हजार रख देखे
1: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लेखे
0: शुद्ध सिपा दुरन दुबा सो साज सनादर जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे
0: तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरियार बिचारे सार की तार बछैया
1: तोरा देश मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया
0: गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही

0: नहीं पर मैं सब थाप थपेंगे।
1: उन प्रतापन बाट जैत तुन पापन के वो पुंज खपेंगे। मानव इंद्र गजिंद निरादप जो अंतर लोको राज करेंगे। ब्रह्म हे सर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो। बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। काहू ले पाहन पूज तरे हो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो।

0: बैठा कौसुमत पर शंकर कैठा
1: सगरी से दिखाए चंबवा जुगाद स्वरूप स्वंभव
0: अब्र छा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो
1: दोष जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता
0: ज्येष्ठ जो सन्नी परे तिंगे दुष्ट दुख में मरे
1: मूर्ख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब तारे
0: जो कुल को एक बात है ताकि काल न कटने है
1: रचा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट अरे तत्काला
0: के पर दुष्ट ताए ने हरियो ताके ताप नख में हरियो
1: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चा चव सके ना को

0: सुनो संतो कथे व कथ कहानी।
1: ए मन चंचला चतराई किने ना पाया,
0: चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया।
1: ए माया मोनी जिनेत परम पुलाया,
0: माया तो मोनी तिना कीती जिन ठगौली पाईया।
1: कुर्बान किता तिसे विटो जिन मो मीठा लाया,
0: नानक मन चंचल चतराई।

0: रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न तृष्णा लागे
1: आए सदगुरु जाए
0: कह नानक हो अनरस सब विसरे जा हर बसे मनाए
1: मेरा हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया
0: जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया
1: अरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया
0: प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया
1: नानक सृष्ट का मूल रचा जोत राखी ता तू जग में आया
0: मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया
1: हर गाओ मंगल नि सखी सोग दुख ना व्यापे
0: चरण लागे दिन सभागे आपना पिर जापे
1: अनंत वाणी गुरु शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो
0: कह नानक प्रभ आप मिलिया करन कारण जोगो
1: ए शरीरा मेरे आए जग में।

0: धर्म कमाया तुद शरीरा जातु जग में आया।
1: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया।
0: गुर प्रसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया।
1: कह नानक ओ शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से ओ चित लाया।
0: ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई।
1: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने हल्या।
0: यो विश संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
1: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई।
0: कह नानक ए नेत्र अनसे सतगुर मिलिए दिव दृष्ट होई।
1: ए सरनो मेरे ओ साचे सुनने नू पठाए।
0: साचे सुनने नू पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जित सुई मंतन हरिया हुआ रसना रस माणी।
0: सच अलख विडाणी ताकि

तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत उचित ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दया वै ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, होमै विचो हो जाए। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जो पावे नाम, राम जो दाता मुक्त को।

तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरे कृपा मैं सुख कनेर। कोए न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री

निकट वसै देखै सब सोई, गुरमुख विरला बुझै कोई। निकट वसै देखै सब सोई, गुरमुख विरला बुझै कोई। विण पै पाइयै भगत ना होई, शब्द रते सदा सुख होई। ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ। ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई। कथ कहने ते रह ना कोई, बिन रस राते मुक्त ना होई। ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई। मनमुख कथनी है पर रहत ना होई, ना वो भूले थाओ ना कोई। मन माया बंधिया सरजाल,

दो पिसुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आओ सगवन। करतार करुणा मैं दीन बीनती करै नानक तुमरी कृपा धरै संग सुहाई सुहावै न चीत जो वह राही दास प्रीत बलुआ के करै भीतर वसै अंध केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मन मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़ै चीत वै विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रो हो। हे आहू जुगत बयाने कई करम जन्म नानक रख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तू पै अरदास जियो बण सब तेरी दास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोय न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सर्व समग्री तुमरा सूत्र तारी

जय प्रसाद तू पावे सा श्री मन मेरे तू ताशो राज जय प्रसाद सब की गत होए नानक नाम जपे नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ पर कृपा ते होए प्रगास प्रभ दया ते कमल प्रगास प्रभ सो प्रसान बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सब निदान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किनु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ श्लोक आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मिता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा अष्टपदी साधक संग मुखूजल होत साध संग मर सगली खोत साधक संग मिटै बिमान साधक संग प्रगटे सुगयान साधक संग पूजा पर मनेरा साध संग सब होत निवेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की मैं बरना कौन प्राणी नानक साध की शोभा पर माए समानी साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ले साध संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकत हूं धावै साध संग सत मन पावै साधक संग माया ते पेन साध संग नानक पाप सो प्रसान साधक संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापनीत साध संग किसो नहीं बैर साधक संग न मिंगा पैर साधक संग नहीं को मंदा साध संग जाने पर मम नंदा साधक संग नहीं होता आप साधक संग तजै सब आपे आपे जाना साध बढ़ाई नानक सब रू बने आई साधक संग न कब हूं तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग वस्त्र गोचर है साधु कै संग जरस है साधक संग बसै थान ऊंचा साधु का संग महल पहुंचा साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कह कुरबान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कह संग सो तन पावै जिस तन दे सब को बरसावै साध संग तन पावै करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधक संग पाप लायन साधक संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व धन गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट धोत निहाल साधक संग लुक हरै साधक संग रख पर हरै साधक संग इहा उहा सुहेला साध संग बिशत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न मिथा जावै पार ब्रह्म साधक बसाए नानक उदरै साध सुदसै साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मनते बिसरै साध संग सब निस्तरै साधक संग लगै पर मीठा साधु का संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साधक संग मिटै सब रोग नान सत भेटै संजोग साधकी महिमा बाप वेद न जाने जेता सुनै तेता बख्याने साधकी उपमा तै गुणते दूर साधकी उपमा रही भरपूर साधकी शोभा का नाही अंत साधकी शोभा सदा ब्यांत साधकी शोभा उचते उची साधकी शोभा मूचते मूची साधकी शोभा साध बनयाई नानक साध पर भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कै

निर्मते निर्मला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रगास जैसे तरु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र चतुर समान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन पर व्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सब की नाथ रस ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि मत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मोहता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

ब्रह्मज्ञान निकाय का रंग ब्रह्मज्ञान निकाय बसा प्रभु संग ब्रह्मज्ञान निकाय नाम आधार ब्रह्मज्ञान निकाय नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सा जागत ब्रह्मज्ञानी बुद्ध त्यागत ब्रह्म।

वैज्ञानिका अचेत वैज्ञानिका निर्मल मंत्र वैज्ञानिक जिस करे प्रव्याप वैज्ञानिका वट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस वट बागी बाई है ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइए है ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ

प्रजापति अविनाशी ब्रह्मन में राखो मानो के तु प्रीत आग तिस्ते परे नाय किच कोय सर्व निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गार गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन अनराव मन सा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भर जा का नेत्र भोर तिनका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल साजा का सर्वतोक सुनिया करता कर राज में राज जोग में जोगी तब मैं तपेसर ग्रस्त मैं भोगी ते आय ते आय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरख का कने अंत ना पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम त्या वैसे ते गुण मैं जाको फरमाए जन्म मर फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जय सजना वै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे करे एक रंग नाना बिदकीनो बिस्तार प्रवे अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माए पूरे ओ पूर्ण सब ठाई नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव है नानक हर नाऊ

कार नाम के तारे प्रिय सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सज्जा की बाणी सत पुरख सब माए सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह हृदय प्रवेश सत निरत बुझा जे को नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आप जाने अपनी मितगत जिसकी श्री सो करने हारे अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावै सो वरतिया विस्मन विस्म पय विस्माद जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभु के रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लय होए दाते दुख काटन हार जा कर संग तरे संसार जन का सेवक सो वडभागी जन का संग एक लिव लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच यशपति चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यान हार आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुंता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन मान्या कर्ण करावन तिन मूल पछान्या जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निर्भव हो बसाना जिस ते उपजे तिस माहि समाना बस माहि ले बस गडाई ताको बिना कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक का प्रभ पालन हारा सेवक की राख निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सा साथ सुमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक का नाम जपाई अपने सेवक की आप पत्रा कहता कि गत मित को न लाख प्रभ के सेवक को न पहुंचा प्रभ के सेवक ही उचते उचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कजा के भस्म करे लश्कर कुट लाख जिसका सास न काटते आपदा को राख दे कर हाथ मान जतन करत बाबा तिसके करतब बिरथे जात मारे न रखे अवर न कोई सर्व जिया कर रखा सोए काहे सोच कर हरे प्राणी जप नानक प्रभ लख वडाणी बारंबार बार प्रभ जपिया पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछे अवर नाही दिष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम रस जो जन तिपताने मन तन नाम नाम सुमाने उठत बैठ सोवत नाम कौ नानक जन कै सदकाम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भक्त आत्म कह जाए प्रभ अपने सुरे समाये जो हुआ हो वह सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखाना तिसका गुण का एक न जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे कौ नानक सही जन पूरे मन मेरे दिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अबर से आन सगली चाड़ते जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो वे तेरा नानक ते जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाऊं तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख करे प्रतिपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्के गुर दुरमत मल हिरा गुर बचनी हर नाम उचर सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुर सिखा नाम धन दे गुर का सिख बडभागी सतगुर सिख आलत पल सवार नानक सतगुर सिखो जीए नाल सुमारे गुर कै गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप सिखा कर कछना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास
ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਇਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲਈ ਬੇਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ਅਨਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪੈਰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਰਮਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਫੁਲਿਆ ਨ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰ ਸੱਚਣ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗੇ ਗਵੈ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆ ਦੰਪਤੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਵਾਇਕ ਉਸਤ ਅਨੇਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ ਕਾਉ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਨੀ ਨਿਰਾਹਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸਿਮਰੈ ਸਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਹੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਦਾਸ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ ਕਉ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਵ ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੋ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾ ਸੇ ਤਪਤ ਮਾਏ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਏ ਅੰਧ ਭਿਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇ ਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਭਾਜੂ ਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿ ਨ ਸੇ

अस्पति जब कार्य कचना दिशे तब अपन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समात वैर विरोध के संकमा जब इसका वर्ण चिन्ह न जब तवर शोक के सब आपत जब अपने आप पर ब्रह्मता मोह का के सोबत भरम अपन खेल अवर तीजा नानक करण हर न दूजा जब होवत प्रभ के बलता नहीं तब बंध मुक्त कहो किसको गनी जब एक हरे अगम पर तब नरक सुरक का कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबह तब शिव सख्त कहो कि तचाए जब आपे अपनी ज्योत रहे तब कवन डर कवन कत डरे अपन चलते आप करने हर नानक ठाकुर गम पर अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एक तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही चर्चा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन के मैल कब कहो हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान